समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

त्रिदोषशमना त्रिभुवनेशा नीलग्रीवा सुहास्यवदना नंदीवहना अंधकमर्दना गजांतका दक्षक्रतुदलना दानवदमना दयानिधे अमित भक्त प्रियकरा ताटिकांतक पूज्य त्रितापहरा तुझे गुणवर्णा वया दशशतवक्त्रा शक्ति नभेची सर्वथा नित्यशांत निर्विकल्प निरंजना आशापाश रहित विरक्त पूर्णा निज भक्त पाश विमोचना जन्म मरणा मोचक जो जे विषय कामना युक्त तुझ स्वामी अनन्य भजत त्यासी पुरविसी विषय पदार्थ जे जे इच्छित सर्वही।

कन्यून प्रसंग न घड़े सीमंतिनी पासुनी शिवास अभिषेकिता पाप संहार शिव पूजने साम्राज्य अपार गंधाक्षता माला परिकर

त्वता ब्राह्मण भोजन करिता वर्णिले सर्व प्राप्त होय। मैत्रेयी ने पूर्वी व्रत सीमंतिनी सी सांगितले समस्त त्याहूनी ते विशेष आचरत शिवपूजित आदरे। त्यावरी नैषधाचा पौत्र चित्रांगद नामे गुणगंभीर त्यासी आणोनिया सादर सीमंतिनी दिधली। चारी दिवस पर्यंत सोहळा झाला जो अद्भुत तो वर्णिता ग्रंथ यथार्थ पसरेल समुद्रा ऐसा। सहस्र अर्बुदे धन जाणा राये दिधली वरदक्षिणा वस्त्रे अलंकार नवरत्ना गणना कोणा न करवे। अश्वशाळा गजशाळा रत्नखचित याने विशाळा चित्रशाळा।

राजपुत्र तेज समयी सीमंतिनी स्नानासी सत्वर कालिंदी तीरा पातली एकाकडे एक पहाती आश्चर्य वाटे ओळख न देती दिव्य रत्न मंडित नृपती चित्रांगद दिसत असे।

समस्त राज्यभार समर्पून तपासी गेला इंद्रसेन, तेथे करूनिया शिवार्चन शिवपदासी पावला। आठ पुत्र पितया समान सीमंतिनीसी झाले जाण, दहा सहस्र वर्षे निर्विघ्न राज्य केले नैषधपुरी। जैसा पिता मह नळराज परम पुण्य श्लोक तेजह पुंज, तैसाच चित्रांगद भूभुज न्याय नीति वर्ततसे। शिवरात्री सोमवार प्रदोष व्रत सीमंतिनी चढ़ते करीत, तिची ख्याति अद्भुत सूत सांगे शौनकादिका। हे सीमंतिनी आख्यान सुरस ऐकता सौभाग्यवर्धन स्त्रियास, अंतरला भ्रतार

त्रिदश निंदक असुर तामस अहंकार मद्य सेविति अपर्णा हृदयारविंद मिलिंद श्रीधर स्वामी पूर्ण ब्रह्मानंद

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी के आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।

ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम पुच्छनायकाय नमः, ओम नवग्रह रक्षाम कुरु कुरु नमः, ओम मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु तेषु हृदयं त्वयितोषमेति, किं विक्षितेन भवता भुवियेन नान्यः, कश्चित मनोहरति नाथ भवानत एहि। ओम नमः श्रीमन बलभद्र जय विजय अपराजित भद्रम भद्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व विघ्न

धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टम विनाशय विनाशय नाना प्रकार भोग प्रदाय मम। आपण जेव्हा दुसऱ्या करता म्हणतो त्यावेळेला त्याचे नाव उच्चारून यजमानस्य असं म्हणून पुढे म्हणावे। सर्वारिष्टम हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयम कुरु कुरु व्यवहार लाभम वर्धय वर्धय रणे शत्रुम विनाशय विनाशय वीनापत्ययोगम निवारय निवारय संत्युतिप्तिम कुरु कुरु पूर्णम आयुः कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष युष्मदधिनम प्रत्यक्षम परोक्षम वा अजीर्णम पच पच विश्वमूर्ते अरिन हन हन एकाहिकम द्व्याहिकम त्र्याहिकम चातुर्थिकम ज्वरम नाशय नाशय चतुरधिकान वातान अष्टादश क्षयरोगान अष्टादश कुष्ठान हन हन सर्वदोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुं मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नान हन हन दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय चक्रम गृहीत्वा शीघ्रमा गच्छा गच्छ चक्रेण हन हन परविद्यां छेदय छेदय चतुर्शीति चेटकान विस्फोटय नाशय नाशय वातशूला विहत दृष्टिन सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान आपरे बाह्यांतरादि विवंतरिक्षगान अन्यानपि कश्चित देशकालस्थान सर्वान हन हन विषम मेघनदी पर्वतादीन अष्टव्याधीन सर्वस्थानानि रात्रिदिन पथगचोरान वशमानय वशमानय सर्वोपद्रवान नाशय नाशय परसैन्यं विदारय विदारय परचक्रम निवारय निवारय दह दह रक्षाम कुरु कुरु। ओम नमो भगवते ओम नमो नारायण हुम फट स्वाहा ठट ठ ओम राम ह्रीम हृदयस्व देवता। फलश्रुति। एषा विद्या महानाम्नी पूरा दत्ता शतक्रतोः असुरान हन्तु हत्वा तान सर्वाश्च बलिदानवान यः पुमान पठते नित्यं वैष्णवीं नियतात्मवान तस्य सर्वान हिंसति यस्यात् दृष्टिगतं विषम अन्यदृष्टिविषम चैव न देयं संक्रमेत् ध्रुवं संग्रामे धारयत्यंगे उत्पात शमनि स्वयं सौभाग्यं जायते तस्य परमं नात्र संशयः हुते सद्यो जयस्तस्य विघ्नं तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसौभाग्य संपदः लभते नात्र संदेहो नान्यथा नदितं भवेत गृहीतो यदि वा यत्नं बालानां विविधैरपि शीतः चोष्णतां याति उष्णः शीतमयो भवेत नान्यथा श्रुते विद्यां यः पठेत कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेद्यत्रं गोरचनमयेन च इमां विद्यां शीरोबन्धत् सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा नार्या हस्ते बध्वा विचक्षणाः विद्रवन्ति प्रणशन्ति धर्मस्तिष्ठति नित्यशः सर्वशत्रुभयं याति।

अक्षरो मंत्रः समुख्यायाम स्वाहातो वा। पुढील मंत्र हा 22 वेळा उच्चारावा। हरहि ओम उच्चिष्ट देवे नमः डाकिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी ओम ऐं ह्रीं ठाठ। द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम रक्षाम कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः। सर्व प्रकार बाधा शमनम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु। फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीं ठ स्वाहा। शीघ्रम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु। देवी शाबरी क्रीं ठ स्वाहा। शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णं आयुः कुरु। हेमवती मूल रक्षां कुरु। चामुंडाई देवे नमः। शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु। भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु। सती सरस्वती चंडिका देवी गलम विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु। महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा। सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु। क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःखहरणं मंगलकरणं कार्यसिद्धिं कुरु कुरु।

नवग्रह शेष नाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनम कुरु स्वाहा। आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम ज्ञानम यशोबलम नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्त्र परिसंख्यया जपेत कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर् भवेत् तत्तः अनेक विधिना भक्त्या कवच सिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः सर्वव्याधि भयस्थाने मनसास्यतु चिन्तनं राजानुवशतां यान्ति सर्वकामार्थ सिद्धये अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियताम मम शुभम भवतु। नवनाथ सिद्ध मंत्र। ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो

द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम् रक्षाम् कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः सर्व प्रकार बाधा शमनम् अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीम ठस् स्वाहा शीघ्रम अरिष्ट निवारणम् कुरु कुरु देवी शाबरी क्रीम ठस् स्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णं आयुः कुरु हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुंडाई देवे नमः शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु सती सरस्वती चंडिका देवी गलम विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुख हरणं मंगलकरणं कार्य सिद्धिं कुरु कुरु हरहि ओम श्री रामचंद्राय नमः हरहि ओम भूर्भुवस्वः चंद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनं कुरु स्वाहा आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम ज्ञानम यशोबलम नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्त्र परिसंख्यया जपेत कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर् भवेत् तत्तः अनेक विधिना भक्त्या कवच सिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः सर्व व्याधि भयस्थाने मनसास्य तु चिंतनम् राजानुवशताम् यान्ति सर्व कामार्थ सिद्धये अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियतां मम शुभम भवतु नवनाथ सिद्ध मंत्र ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो

त्रिदोषशमना त्रिभुवनेशा नीलग्रीवा सुहास्यवदना नंदीवहना अंधकमर्दना गजांतका दक्षक्रतुदलना दानवदमना दयानिधे अमित भक्त प्रियकरा ताटिकांतक पूज्य त्रितापहरा तुझे गुणवर्णा वया दशशतवक्त्रा शक्ति नभेची सर्वथा नित्यशांत निर्विकल्प निरंजना आशा पाश रहित विरक्त पूर्णा निज भक्त पाश विमोचना जन्म मरणा मोचक जो जे विषय कामना युक्त तुज स्वामी अनन्य भजत त्यासी पुरविसी विषय पदार्थ जे जे इच्छित सर्वही।

धव तैसा मुख शशि अभिनव त्रैलोक्य सौंदर्य गाळुनी सर्व ओतिली वाटे कमलोद्भवे तिचा जन्म काळी द्विज सर्व जातक वर्णिती अभिनव चित्रवर्मा राया।

वदन पाहुनी रतिपति लज्जित कटि देखोनी हरि वदन न दाखवित गमन देखोनी लपत मराल मानस सरोवरी।

थार्थ पसरेल समुद्रा ऐसा सहस्र अर्बुदे धन जाना राये दिधली वरदक्षिणा वस्त्रे अलंकार नवरत्ना गणना कोणा न करवे अश्वशाला गजशाला रत्नखचित याने विशाला चित्रशाला नृ

खोनी आ रक्त रत्नांसे ढाळ कीर धावती भक्षावया अंगी दिव्य चंदन सुगंध देखोनी धावती मिलिंद दश दिशा व्याप

कुमकुम विरहित वस्त्र अंजन विवर्जित नेत्र राजपुत्र पहातसे न्याहालिता तटस्थ स्वरूपासी वाटती रंभा उर्वशी दासी कुचकमंडलू यासी उपमाना ही द्यावया तप्त चामिकर वर्ण डोळस चिंताक्रांत अंग।

10,000 वर्षे निर्विघ्न राज्य केले नैषधपुरी। जैसा पितामह नळराज परम पुण्य श्लोक तेजः पुंज, तैसाच चित्रांगद भूभुज न्यायनीति वर्ततसे। शिवरात्रि सोमवार प्रदोष व्रत, सीमंतिनी चढ़ते करीत तिची ख्याति अद्भुत। सूत सांगे शौनकादिका, हे सीमंतिनी आख्यान सुरस, ऐकता सौभाग्यवर्धन स्त्रियास अंतरला भ्रतार।

त्रिदश निंदक असुर तामस अहंकार मद्य सेविति अपर्णा हृदया रविंद मिलिंद श्रीधर स्वामी पूर्ण ब्रह्मानंद अभंग अक्षय अभेद न चले न ढले कदाही शिवलीलामृत ग्रंथ प्रचंड स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड परिसोत सज्जन अखंड।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है श्रीनिवास खड़े जी ने।